0: सुनील ठक्कर, आप सुन रहे हैं मसाला रेडियो। मौसम मस्त है, गर्मी जबरदस्त।
1: Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM Houston và 1